0: नहि नहि रक्षति दुःखकरणी
1: नहि
0: नहि रक्षति दुःखकरणी
1: नहि नहि रक्षति दुःखकरणी